सुप्रभात, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है, शक संवत 1948, भाद्र माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, जिसमें आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए चिंतन। चिंतन का विषय है रोशनी।

0: रोशनी, उजाला या प्रकाश, तीनों शब्दों का भाव एक ही है। अंधेरों को हराने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी को हम जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। जब सब तरफ गहन अंधकार हो, तब हमें रोशनी की एक छोटी सी किरण आगे का रास्ता दिखाती है। जैसे सूर्यास्त के बाद पृथ्वी अंधकार में लीन हो जाती है, तब हजारों सितारे मिलकर भी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा दिया अपनी बाती की लौ जलाकर हमारे आसपास उजियारा फैला देता है और हम अपने आसपास की चीजों को सुगमता से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घना अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन माचिस की तीली की लौ या फिर लाइटर से उत्पन्न प्रकाश में हम अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश या रोशनी की आवश्यकता होती है। बाहरी अंधियारे को दूर करने के लिए हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर के अंधेरों को हराने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जो एक योग्य गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब हमारे मन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, तो हमारा मन रोशन होने लगता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो हमें ये संसार नए स्वरूप में नजर आता है। वास्तविक रूप से हम अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालकर अपना जीवन ढो रहे हैं, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य, मैं, मेरा, भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के साथ जी रहा है। इस प्रकार की छोटी मानसिकता के साथ जीवन जीने से हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में मनुष्य उलझता है, तब जीवन दुखी हो जाता है और हम जीवन के रास्तों से भटककर एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जिंदगी को सुचारू चलाने और इंसानियत के रास्तों पर चलने के लिए हमें अपने मैं से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार काली अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और धरती पर उजाला होता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर के तम को हराने के लिए अपने मन में एक नई रोशनी कायम करनी होगी। यही ज्ञान ज्योति हमें सत्य की राह पर ले चलेगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, जिसका विषय था रोशनी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले भक्ति रचना सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंदना कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। सवेरे के 6:30 हुए हैं और लीजिए आप सुनिए श्री रामचरितमानस गान, कड़ी संख्या 187। कलाकार हैं ए हरिहरन व वाणी जयराम, संगीतकार हैं सतीश भाटिया। लीजिए सुनिए।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कड़ी संख्या 187, कलाकार ए हरिहरण व वाणी जयराम, संगीतकार थे सतीश भाटिया, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से किया गया। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
0: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रूपरेखा। 6:45 पर आप सुनेंगे कर सारी बात कार्यक्रम, जिसमें वार्ता होगी फल परिरक्षण का महत्व विषय पर। श्रोताओं, 7:00 सुनिएगा संस्कृत कार्यक्रम सौरभ, वार्ता होगी संस्कृत भाषा शांति च, वार्ताकार होंगे राजेंद्र कुमार रेगर।

सवेरे 8:45 पर सुनिएगा लोक संगीत कलाकार छोटू राम पार्टी से। सवेरे 9:15 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम 25 वर्ष जनसेवा के, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सवेरे 9:45 पर सुनिएगा झलकी भोपाल की ट्रेन। सवेरे 10:00 सुनिएगा हेलो जयपुर कार्यक्रम। सवेरे 10:20 से सुनिएगा 10:40 तक एशियन गेम्स 2026 की हाइलाइट्स सुनिएगा। सवेरे 11:00 पोस्ट बॉक्स नंबर 111 ये कार्यक्रम सुनिएगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 12:10 पर सुनिएगा सिंधी कार्यक्रम गुड्डलनी जी गुलकारी। श्रोताओं 12:40 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा और दोपहर 1:05 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। एक बजकर 30 पर सुनिएगा बालवाणी कार्यक्रम, जिसमें चर्चा होगी गणेश उत्सव, रामदेव जयंती, तेजादशमी और किशोरी जागृति विषय पर, और हुनरबाज में सुनिएगा अयांश जैन को। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा राजस्थानी लोक संगीत भूमिका अग्रवाल से। 3:30 पर लोक संगीत का आनंद फिर से लीजिएगा कलाकार बनारसी लाल झोरी से। शाम 4:10 पर सुनिएगा द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह का सजीव प्रसारण समाप्ति तक सुनिएगा। शाम 5:00 युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा, जिसमें आप रोजगार सूचना सुनेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। शाम 5:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा और फिर 6:05 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। शाम 7:00 ग्राम भारती कार्यक्रम सुनिएगा, जिसमें बातचीत होगी सरसों की उपयुक्त किस्में तथा खेत की तैयारी डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा से। शाम 7:30 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनिएगा, जिसमें बातचीत होगी पादप वृद्धि नियामकों का उपयोग और कृषि उत्पादन, जानकारी देंगे शशिकांत गोयल। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 8:30 पर सुनिए

परिरक्षण काई है ई के बारे में जानवो जरूरी है। तो खाद्य पदार्थ का मौलिक आकार और रूप ने परिवर्तित कर और अपरिवर्तित राख वाला पोषक तत्व और विटामिन यथासंभव बनाए रखबा के लिए बिना विकृति के लंबा टेम तक सुरक्षित रखबा की विधि और तकनीक है बिन अपा परिरक्षण के। वहाँ फल सब्जियां और बाकी उत्पाद को परिरक्षण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। परिरक्षण विधियां जो है वो दो श्रेणी में बांटी गई है, वो आपा इसके बारे में आगे जाना ला। पर मोटे तौर पे दुनिया भर में जितना भी विकसित देश है फल परिरक्षण व्यवसाय जो है वो भी में महत्वपूर्ण स्थान रखे। और आज का युग में राष्ट्र के अस्तित्व में के लिए वो जरूरी मान्यो गयो है। इसका कोई कारण है कि युद्ध हुयो, बाढ़ हुयो, सूखो हुयो, फसल बड़े पैमाने पे नष्ट हो जावे, एड़े टेम में खाद्य पदार्थ है वो परिरक्षित जो खाद्य पदार्थ है वे पूर्ति कर सके। पौष्टिकता है वो बहुत बड़ी चीज है, कारण कि कोई भी देश समृद्धि के लिए जन जागरण सु मिलबा वालो भोजन जो पौष्टिक अगर वे तो बीमे रे बाला आदमी है वे स्वस्थ रहे और अच्छे से जो जीवन है या मनुष्य जो है अच्छे से श्रम ज्यादा कर सके। परिरक्षित फल और सब्जियां जो है वो पौष्टिक होया करें। फलों को परिरक्षण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है और दो प्रकार को होया करें। कौन कौन सी श्रेणी है सबों पहले की बात करा। अल्पावधि परिरक्षण की बात करा तो इक्की अवधि कुछ दिना सु लेर कुछ महीना तक ही हुए। दीर्घावधि परिरक्षण जो है इक्की अवधि कमो कम 2 से 3 साल तक काम कर सका। तो सबों पहले अल्पावधि परिरक्षण की बात करा तो इन्हें 7 भागा में विभाजित करियो गयो है। पहलो है निरोगावस्था, फल और सब्जियां ने तोड़वा समय पेय करता समय सावधानी रखनी चाहिए जिसु की उकी ऊपरी सतह नष्ट ना होवे, क्योंकि इकी ऊपरी सतह क्षतिगत हो जावे तो सूक्ष्म जीवी प्रवेश करबासु फल और जो सब्जी है वह सड़ सके। न्यूनतम ताप परिरक्षण की बात करा तो फल और सब्जियां ने तोड़ता ही थोड़ी देर जल में भिगो कर ठंडा पानी में धोयो जावे और इकी गर्मी निकाल दी जावे जिससे उकी श्वसन दर में कमी आ जावे, साथ ही सूक्ष्म जीवियां की संख्या में भी कमी आ जावे। ई कारण सु होबा वाली विकृति भी रुक जावे। आर्द्रता अपवर्जन परिरक्षण, सूक्ष्म जीवियां की बढ़ोतरी के लिए एक सीमित तापमान के साथ साथ आर्द्रता या नमी की भी जरूरत पड़े। ई कारण सूखोड़ा फल और सब्जियां ने खुलो छोड़वा पर वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी पार वे फफूंदी ग्रस्त हो जावे। आर्द्रता संरक्षण या वैक्सिंग की बात करा तो वैक्सिंग सु फल और सब्जियां को भीतरी नमी ज्यों की त्यों रोकी जा सके जिसु फल और सब्जियां जो है वो जल्दी मुरझावे कोनी, साथ ही वे ज्यादा टेम तक सुरक्षित रह सके क्योंकि न तो सूखे और न ही सूक्ष्म जीवी लग पावे। इसु अतिरिक्त श्वसन दर में भी कमी हो सके। वैक्सिंग प्रक्रिया में मोम के साथ उचित अनुपात में सूक्ष्म जीवी नाशक दवा मिलार मोम मिश्रण तैयार करियो जावे और ई मोम मिश्रण में फल और सब्जियां ने एक एक कर डुबोयो जावे। ई मिश्रण ने फल सब्जियां पर छिड़क दियो जावे। ई उपचार के बाद प्रतिशतन की जरूरत कौन पड़े और वो देखियो गयो कि मौसमी के भंडारण अवधि 12 से 30 दिन हो जावे। नींबू की बात करा तो 5 से 12 दिन तक रखियो जा सके और इसके अलावा केलो आम टमाटर ने भी भंडारण करियो जा सके। वायु अपवर्जन क्रिया सु यदि फल सब्जियां और इके उत्पादन ने वायु सु वंचित रखियो जावे तो वायु रोधी डिब्बा में बंद कर रखियो जा सके, ज्यादा ज्यादा समय तक इन्हें सुरक्षित रख सका। कुछ रसायन जिया सोडियम बेंजोएट अशो है जिन्हें प्रयोग कम मात्रा में कर मानव शरीर ने नुकसान नहीं पहुंचे। कुछ खाद्य पदार्थ या चीनी तेल नमक अशा है जो मानव का शरीर में वृद्धि के लिए अनिवार्य है, सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी भी रोके। आगे बात करें अगर खाद्य पदार्थ ने 60 से 80 तक ताप प्रदान करियो जावे तो इनमें प्रविष्ट सूक्ष्म जीवियां या तो नष्ट हो जावे या निष्क्रिय हो जावे जिससे खाद्य पदार्थ के गुणा में कोई परिवर्तन कोन होवे। जी प्रक्रिया ने पाश्चुराइजेशन कहवे है, फल और सब्जियों को सूप पाश्चुराइज कर ही बाजार में बिक्या करे। अब बात करा दीर्घावधि परिरक्षण की तो ई विधि सु असंसाधित या संसाधित खाद्य पदार्थ में प्रविष्ट सूक्ष्म जीवियां ने पूर्णतया निष्क्रिय बना दियो जावे।

0: ही सूक्ष्म जीवों को पुनर्प्रवेश भी प्रतिरोधक रोक्यो जा सके। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव और वहाँ का किण्वका की क्रिया दोबारा कौन हो सके और खाद्य पदार्थ एक लंबी अवधि तक खराब हुआ बिना परिरक्षित रहे। दीर्घावधि परिरक्षण भी अगर बात करा तो दो भागा में आप इन्हें बांट सका, ऊष्मा प्रयोग सिद्धांत सु और ऊष्मा रहित प्रयोग परिरक्षण सिद्धांत। ऊष्मा प्रयोग सु परिरक्षण की बात करा तो आप जाना कि खाद्य पदार्थ में पाया जावा वाला सूक्ष्म जीव और एकक किण्वक ने ताप सु नष्ट करो जा सके। प्राय देखा कि सभी सूक्ष्म जीव 65 सु उका बीजाणु 115 सु ज्यादा ताप प्रयोग सु नष्ट हो जावे। ऊष्मा प्रयोग विधि दो भागा में विभक्त करे, एक तो सुखाणो और एक निर्जलीकरण। ई विधि सु फल और सब्जियां को पानी है वो बाहर निकाल दियो जावे जिससे सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जावे, सूक्ष्म जीवियां का किण्वक भी निष्क्रिय हो जावे और सूखा बासु वहां को पुनः प्रवेश भी अवरुद्ध हो जावे। सूखा बा की प्रक्रिया धूप में भी सुखा सका और निर्जलीकरण भी सुकर सका। दूसरी बात करिए अपा ऊष्मा निर्जलीकरण, आ क्रिया सभी खाद्य पदार्थ में एक सी कौन हुए बल्कि उनकी प्रकृति के आधार पर ही संभव हुए। फल सब्जियां को तैयार कर डिब्बा या बोतल में भरियो जा सके, इसु बड़ा बड़ा प्रेशर कुकर में पका सोसू ज्यादा तापोचार कर और इको सूक्ष्म जीवियां सु नष्ट करो जावे। ऊष्मा रहित प्रयोग सु परिरक्षण अगर करबा की बात करा तो ई प्रयोग सु सूक्ष्म जीवियां को नाश कौन हुए बल्कि इसु बाह्य किण्वक निष्क्रिय हो जावे, साथ ही वायुमंडल का सूक्ष्म जीवियां को प्रवेश भी कौन हो सके। ज्यादातर खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक परिरक्षण रसायन मिलाया जावे तो सूक्ष्म जीवी आपरी क्रिया से वंचित हो सके। अतः सूक्ष्म प्रयोग के बिना ही खाद्य पदार्थ को परिरक्षण संभव हो जावे। फल परिरक्षण महत्व पे आप बात कर रहे हैं और फल परिरक्षण की जानकारी आप ली भी, महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि जहाँ शुरू में आप बतायो कि विश्व का लगभग सभी विकसित देश के मायने फल परिरक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखे। आज का जमाना के मायने अस्तित्व के लिए इकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कारण कि कठिन समय में सुरक्षा प्रदान करवा के तौर पे फल परिरक्षण है इको महत्व है। युद्ध की स्थिति हो, बाढ़ सूखो या फसल को बड़े पैमाने पर अगर नष्ट हो जावे तो परिरक्षित खाद्य पदार्थ है वे आपा की पूर्ति कर सके।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कर सारी बात कार्यक्रम जिसमें आपने वार्ता सुनी फल परिरक्षण का महत्व विषय पर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू और अनूपगढ़ से भी सुन रहे हैं। श्रोताओं अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार श्रोताओं, सौरभ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता, संस्कृत भाषा शांति च। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार रैगर।
1: दिव्याम भव्याम सुबोधम च शुद्धाम अर्थ प्रदायिनीम जननीम भवभाषाणाम वंदे गीर्वाण भारतीम। नमो नमः मित्राणि, अद्य माम संस्कृत भाषा शांति च इति विषयोपरि वक्तुम अवसरः दत्तः। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरायां विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषायाः मूर्धन्यम् स्थानम् अस्ति। यतो हि संस्कृत भाषायां निगदितं विचारितं च उत्कृष्ट साहित्यं न कस्यामपि भाषायां विद्यते। विश्वस्य प्रथमं साहित्यं ऋग्वेदो अपि अस्यां देववाण्याम् उपलब्धो अस्ति। शुद्धा परिष्कृता एवं परिमार्ज

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम सौरभ वार्ता, संस्कृत भाषा शांति च वार्ताकार राजेंद्र कुमार रेगर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

और ये गीत सुन रहे हैं आप राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश कुमार, सुरेश वाडकर की, और बोल लिखे रविंद्र जैन ने, संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने ही।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अभी आपने गीत सुना धर्मात्मा फिल्म से। आवाज थी किशोर कुमार की, बोल लिखे हिंदी और ने, संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने।

रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से सुनिए भूपिंदर की आवाज़ में ये गीत। बोल लिखे हैं नक्श लयालपुरी ने और संगीत से सजाया खयाम ने।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कैसी बेवफाई इस फिल्म से गीत सुन रहे हैं आप, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल लिखे नक्श लयालपुरी ने, संगीत खयाम का।

रफू चक्कर फिल्म से गीत सुना आपने, आवाजें थी कंचन और शैलेंद्र सिंह की, बोल लिखे गुलशन बावरा ने, संगीत बद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है

बड़े अच्छे लगते हैं। ये गीत अभी आपने बालिका वधू फिल्म से सुना अमित कुमार की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत आर डी बर्मन का। यशुदास की आवाज़ में सुनिए अगला गीत, फिल्म का नाम सावन को आने दो, बोल लिखे पी पंकज ने, संगीत बद्ध किया राजकमल ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह सफर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। सवेरे 8 बजे अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ सुनिएगा और 8:30 पर सुनिएगा उर्दू खबरनामा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1000

0: 67 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
1: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकते हैं।

0: रखेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टेक बॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और

0: इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर ABVP और NSUI का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, ABVP ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू, दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
4: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklain Akhtar for Akashvani News, Delhi.
3: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices, along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing, and youth-led discussions. Bharatiya Janata Party Punjab's Nasha Mukt Punjab Yatras, which the party national president Nitin Naveen launched from the border district of Pathankot on September 18, is getting a remarkable response from the people of the state. Yesterday, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, while launching the second out of the four phases of the Yatras from Fatehgarh Sahib, termed it as a movement of a new beginning in Punjab. She said, Nasha Mukt Punjab Yatra is not merely a political program, but a call for collective action to free Punjab from drugs, crime and fear. More from our correspondent.
5: The 13-day-long Nasha Mukt Punjab Yatra, which has started with a tagline of Bhajpa Da Nara, Nasha Mukana Sara, is focusing on three major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. The third Yatra will be launched today by Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal from Fazilka's Sadiki border, and tomorrow the fourth phase will be flagged off by Union Agriculture Minister Shiv Raj Singh Chauhan and Haryana Chief Minister Nayib Singh Saini from Talwandi, Sabo and Bathinda. The Nasha Mukt Punjab Yatra will conclude in the presence of Union Home Minister Amit Shah on September 30th at Jalandhar. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
3: Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
6: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है
3: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the introduction of the Goods and Services Tax, or GST.
7: The GST was introduced in 2017 with the aim of consolidating a fragmented internal market divided by central and state taxes. cascading taxation and border checkposts. 17 taxes and 13 cesses were brought under a common framework, making one nation, one tax, one market a practical reality. Before GST, interstate movement could involve repeated tax checks, paperwork and long waits. The recent reforms in the GST rates have been welcomed by both the industry and the common people. Speaking to Akashvani News, Chairman of MVIRDC, World Trade Center, Mumbai and President of All India Association of Industries, Dr. Vijay Kalantri said that the rationalization

0: has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Madhya Maharashtra, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. On to sports now. In chess Olympiad, Indian men's team defeated Spain 3-1 with world champion D. Gukesh leading the way with a clean victory over former world championship challenger Alexey Shirov in Samarkand yesterday. Meanwhile, R. Pragyananda was held to a draw by David Anton Guijarro, while Nihal Sarin also settled for a draw against James Santos Latasa. In the women's section, India recorded a 3-1 victory over Mongolia. B. Savita Shree continued her impressive run with a fourth consecutive win, defeating seasoned player Bakht Kuyag. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. In today's cricket event, Indian women team will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. ABVP sweeps 3 of 4 DUSU seats. NSUI rebel wins VP post, writes in the Tan Times. While the Sunday Tribune headlines, ABVP sweeps DUSU poll again. Independence VP post win stunts rivals. FTA skilling incentives opening new employment avenues for youth, says Prime Minister, writes Sunday Pioneer. The Hindu also quotes the Prime Minister in its headline, developing nations wrongly blamed for emissions. The Sunday Statesman reports, Bengal bipolar drama, Mamta's Rajinagar candidate does U-turn after pull-out decision. The Asian Age headlines, India rejects new US tariffs pressure. And finally, Sunday Pioneer writes, end of an era, 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the Veer Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1,067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने अगले महीने की एक तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खुसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिल इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल पूरा करना होगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: बायोमेट्रिक आधार तस्दीक इस बात को यकीनी बनाती है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सिर्फ मजाज और अहल कुंभों तक ही पहुंचे। हर कनेक्शन को आधार तस्दीक से जोड़ने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों के कमर्शियल और सनती इस्तेमाल में डायवर्जन की रोकथाम होगी। इसके अलावा इससे जाली और गैर मजाज कनेक्शन खत्म करने में भी मदद मिलेगी और सब्सिडी फराहम करने का अमल शफाफ और मरकूज हो सकेगा। वजारत ने कहा है कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का मकसद किसी भी मजाज कुंबे को एलपीजी फराहम करने से इनकार करना नहीं है। वहीं वजारत ने यह भी कहा कि हर ग्राहक के पास इस अमल को पूरा करने के कई आसान तरीके दस्तियाब होंगे। वजारत ने कहा कि 27 करोड़ 43 लाख सार्फीन पहले ही इस अमल को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्दीक का यह अमल सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर या तेल मार्केटिंग कंपनियों के एप्स पर भी पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सार्फीन से अपील की है कि वो इस काम को 1 अक्टूबर 2026 से पहले मुकम्मल कर ले। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
2: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा नशा मुक्त युवा अभियान के 100 हफ्ते के तहत आज मुल्क भर में नौजवानों की शमूलियत वाले प्रोग्राम होंगे। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजारत ने बताया कि मुल्क भर के 1067 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद होगा। इन मकामात में 471 जिले माय भारत दफातर और 596 शराकतदार तंजीमों के मकामात शामिल होंगे। ये तकरीब मुल्कगीर सतह पर नौजवानों की शमूलियत का अहम लम्हा होगा, जिसमें माय भारत शराकतदार तंजीमें और नौजवान अफराद सेहतमंदाना फैसलों और नशा मुक्त मुस्तकबिल के अहद के लिए यकजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिले पठानकोट से शुरू किया था, रियासत के आवाम की जानिब से इसे जबरदस्त पजीराई मिल रही है। दिल्ली की वज़ीर-आला रेखा गुप्ता ने कल फतेहगढ़ साहिब से यात्रा के 4 मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पंजाब को मुनशियात जरायम और खौफ से आजाद कराने की इज्तिमाई कार्रवाई की अपील है। तफसील हमारे नामानिगार से।
4: 13 दिन तक जारी रहने वाली नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जो भाजपा द नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ शुरू हुई है, पंजाब को दरपेश 3 बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये चैलेंजेस हैं मुनशियात का बढ़ता हुआ मसला, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी। यात्रा रियासत में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और तमाम 117 संभली हलकों से लोगों को मुतहरिक करेगी, ताकि मुनशियात के खिलाफ जंग को एक बड़े अवामी एहतजाज तहरीक में तब्दील किया जा सके। तीसरी यात्रा आज कानून इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से फाजिलका के सादिकी सरहदी इलाके से शुरू की जाएगी। कल चौथे मरहले का आगाज मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी की जानिब से भटिंडा के तलवंडी साबोह से किया जाएगा। नशा मुक्त पंजाब यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में इख्तिताम पजीर होगी, जहां मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की शिरकत मुतवक्के है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नई तकरीरी पाने वाले 51,000 से ज्यादा नौजवानों में तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बरसों में नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी महारतें और मौके फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज की है।
5: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंतक अजम से इबारत है, जो आज भी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماج کو بااختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگی

0: मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज ओलंपियाड में मर्दों की भारतीय टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। इस दौरान आर प्रगनंदा ने डेविड एंटन गुइजारो के खिलाफ ड्रॉ खेला, वहीं निहान सरीन को भी जेमी लतासा के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा। वहीं खवातीन के जुमरे में भारत ने मंगोलिया के खिलाफ 3-1 की जबरदस्त जीत हासिल की। भारत की सविता ने मशहूर खिलाड़ी मंगुथुन बतखुया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लगातार चौथी जीत दर्ज की है। उज्बेकिस्तान के समरकंद के सिल्क रोड इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आज 46वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड के मुकाबले होंगे। ये मुकाबले भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुनाकिदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, गुज़श्ता 12 वर्षों में माहौलियात के लिए भारत ने गैर मामूली पेशरफ्त की। रोजनामा प्रताप ने हाई कोर्ट्स में जजों की तकरीरी से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 14 नए जजों की तकरीरी की मंजूरी दी। रोजनामा इंकलाब ने सऊदी वजारत दिफा के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा, दिफाई बहरी इतिहाद के चौथे मनसूबाबंदी इजलास में 41 ममालिक की शिरकत। अखबारात की कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ग्रीनलैंड पर अमरीका और डेनमार्क के दरमियान मुआहदा, इस्लामाबाद मुआहदा दोबारा बहाल करने की कोशिश जारी, ईरान का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रीफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर जनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए लोक संगीत, कलाकार छोटूराम पार्टी से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत छोटू राम पार्टी से, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। फैटी लिवर स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इस साल अब तक 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। आरपीएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 आज दोबारा आयोजित की जा रही है और सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। कल इस अभियान के नए चरण को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया था। राजस्थान ने फैटी लिवर की स्क्रीनिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साल 2025-26 में 2,61,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस साल अब तक करीब 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग को व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। एनसीडी व्यवस्था के तहत फैटी लिवर की व्यवस्थित स्क्रीनिंग को शामिल किया गया है। मिशन लिवर स्माइल के तहत बीमारी की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के लिए रेफरल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 63 जिला अस्पतालों में मिशन लिवर स्माइल के तहत क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मोटापा कम करने के लिए मिशन ओवी लॉस चलाया जा रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तहत 305

0: नगर निकायों में कल अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती के बाद कल ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका में कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जयपुर से भाजपा ने सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सुनीता मावर को इस पद के लिए चुना है। उधर जोधपुर में भाजपा ने प्रसन्नलाल मेहता और कांग्रेस ने 4 पार्षदों के नामांकन भरवाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनेगी उसे सभी पार्षद का समर्थन देंगे। वहीं कोटा में कांग्रेस की सुनीता सुमन और भाजपा से अनुसुईया गोस्वामी ने नामांकन भरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश की सामाजिक यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जिससे सोच बदली है और देश के भविष्य को नई दिशा मिली है। आइए जानते हैं बेटियों के प्रति सम्मान, समानता और विश्वास को मजबूत करने वाले इस सामूहिक संकल्प अभियान के बारे में।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करीब 11 साल पहले हुई थी। पिछले एक दशक में इसने लक्षित सरकारी योजना से आगे बढ़कर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लिया है। यह अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे घटते बाल लिंगानुपात और लैंगिक भेदभाव की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अभियान से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बाल विवाह पर अंकुश लगा है और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। ये योजना बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा और सशक्तिकरण तक उसके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर देती है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 दोबारा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा दो पारियों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। 11 जिलों में 666 परीक्षा केंद्रों पर 218,131 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। निष्पक्ष परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी 11 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रदेश में भादवा माह में विभिन्न स्थानों पर लोक देवताओं के मेलों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे मेले में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में बाबा रामदेव के जयकारे और लोक गीतों की धुनें गूंज रही हैं। वहीं कल तेजादशमी पर लोक देवता तेजाजी की पूजा अर्चना की जाएगी। सवाई माधोपुर में आज से ही मेलों का आयोजन शुरू हो गया है। कल भजन संध्या और भंडारे होंगे। उधर बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि बायतू कस्बे में खेमा बाबा का मेला परवान पर है। लोक गीतों और लोक नृत्यों की थाप के साथ श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है।
2: मेले में बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से यात्रियों की आवक बनी हुई है। खेमा बाबा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। स्थानीय कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां दे रही हैं। मेले में भोपाल नृत्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सिद्ध श्री खेमा बाबा लोक आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: सेमीकंडक्टर से जुड़ा 5वां सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन के इस सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इनमें लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 52 देशों के प्रतिनिधि और 150 से अधिक वक्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान 56 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, आधुनिक पैकेजिंग उपकरण और सामग्री, पावर इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक मेधा से जुड़ी घोषणाएं भी हुई। उधर एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बात करते हुए केंद्रीय सूचना और

0: प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो एक चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले से ही प्रमाणीकरण करा चुके हैं उन्हें दोबारा ये कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। जापान में 20वें एशियाई देश खेल में आज भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से भिड़ेंगी। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल क्लार्विन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी के मुकाबले में उतरेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। फैटी लिवर स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इस साल अब तक 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। आरपीएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा आज आयोजित। और सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अब प्रसारित होगा विशेष कार्यक्रम 25 वर्ष जनसेवा के हमारे दिल्ली केंद्र से।

संचालन किया जाता है और एक साझा पहल होती है जो समाज के वंचितों, दिव्यांगों, युवाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक संसाधनों से जोड़कर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि हम विकसित हो सकें। विकसित भारत

2047 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। विजय आपके साथ है और बड़े प्यारे गाने लेकर आया है। दिल तो करता है कि बस गाने सुना दूं आते ही, लेकिन साहब फिर तो बात ही क्या है। ये साहब हैं जो गाना आप सुनने जा रहे हैं, इसमें हीरोइन कौन थी ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म की मेन हीरोइन, मुख्य हीरोइन यानी हीरोइन राखी थी, मगर गाना किसी और पे फिल्माया गया है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ बेमिसाल फिल्म का ये 1981 में आई फिल्म, और इस गाने में किशोर कुमार साहब ने ख़ास तौर पर आवाज़ दी आर डी बर्मन के कहने पर कि वे चाह रहे थे कि वे गाना ना गाएं। उसकी कुछ अलग वजहें थी जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बताना भी होता है ना गाने के बारे में। लेकिन आर डी बर्मन के साथ पक्की दोस्ती की वजह से ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1982 में आई थी, बेमिसाल और बहुत ही प्यारा गाना।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर आप हमें सुन रहे हैं। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित होगा। 25 वर्ष जनसेवा के कुछ ही लम्हों में कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
0: रेडियो ने कभी

0: सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, किसी कारणवश हम आपको विशेष कार्यक्रम अभी नहीं सुनवा पा रहे हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक पुनर्जीवन।
2: प्रस्तुत है नाटक पुनर्जीवन, लेखिका सुधा जौहरी।

0: अरे पंडित जी, पंडित जी जरा बड़ा पानी देना।
1: लो भाई रामलाल, पानी पी लो।
2: अरे ठहरो, मैं जरा पीठ पर हाथ फेर देता हूँ। देखो ना किशन, रामलाल जी को खांसी के द्वारा शुरू होता है तो फिर ये रुकता नहीं है।
1: हाँ पंडित जी, सही कह रहे हो। अब मैं कल ले गया था इनको डॉक्टर के पास, उन्होंने दवा भी दे दी थी, लेकिन
0: अब ठीक है।
2: ठीक है पंडित,
0: अब ठीक है। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, सच्चाई तो ये है कि अब उम्र हो गई है। हमारी फाइल काफी दिन चल चुकी, 85 के होने को आए हैं। बस यम देवता का हरकारा आने ही वाला है।
1: ऐसा क्यों कह रहे हो रामलाल जी आप?
0: अरे और क्या कहें किशन, कोई अमृत चक्कर या काले कौवे खाकर थोड़े ही आए हैं। जो दिन निकल रहे हैं सो निकल रहे हैं। बस चल देंगे तुम सबको टाटा बाय बाय करके।
1: देखो पंडित जी, ये कैसे बात कर रहे हैं?
0: अरे किसान, सच्चाई को रेशम में लपेट देने से सच्चाई छुप नहीं जाती भैया। अब सचमुच अपने चला चली के डेरे हैं।
2: रामलाल जी, मैं तो कहता हूं दोनों में से किसी बेटे को क्यों नहीं बुला लेते, या आप उनके पास चले जाओ, हैं, परिवार के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ना पंडित जी, ना कहाँ चला जाऊं? हाँ, अमेरिका, जहां बड़ा बेटा डॉक्टर है और छोटे के पास जो मर्चेंट नेवी में है, आज फ्रांस में तो कल मोरक्को में, उन दोनों के अपने परिवार हैं, अपनी दुनिया है, लेकिन मेरी दुनिया बस उस सामने वाले घर में सिमट कर रह गई है। मेरा परिवार तुम ही लोग हो।
1: फिर भी देखो, भाभी थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था रामलाल जी, लेकिन अब बेटों के पास।
0: देखो पंडित, देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे बेटे कुपात्र हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी अपनी दुनिया है। किसे फुर्सत है जो मुझ बूढ़े के साथ कुछ समय बिताएं, हैं? अपनी कहें मेरी सुने। अरे भैया सच पूछो तो मुझे भी वहां घुटन सी महसूस होती है, यहां तुम लोगों के साथ खुलावट लगती है, अपनापन।
1: पर अकेले घर में रामलाल जी?
0: नहीं किशन, घर के हर कोने में, दीवारों खिड़कियों तक में तुम्हारी भाभी की याद जो बसी हुई है। अरे भैया अकेला कहाँ हूं मैं?
2: देखो रामलाल जी, भाई हम ठहरे संस्कारी पंडित, अरे ये तो सोचो, भगवान न करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो भाई कौन करेगा।

0: तुम्हारा अंतिम संस्कार है, तुम्हें पुत्र होते हुए भी।
1: मुखाग्नि देकर देह को अग्नि समर्पण की बात कर रहे हो ना पंडित? और अगर मैं कहूं कि मेरी देह अग्नि को समर्पित करने की आवश्यकता ही नहीं है तो?
0: अरे ये क्या बात कर रहे हो रामलाल जी? अंतिम बिस्तर तो लकड़ियों की चिता।
1: नहीं नहीं किशन, नहीं, मेरा दूसरा मतलब है। देखो, पशुओं के मरने पर भी उनकी देह कितनी काम आती है, खाल का चमड़ा, हड्डियों से अन्य वस्तुएं।
0: अब भाई आपकी खाल इतनी मोटी तो नहीं है ना कि चमड़ा बन सके हैं?
1: तुम लोग गलत समझ रहे हो भैया, मैं अपना शरीर अनुसंधान संस्थान को दान कर चुका हूं।
0: क्या? अनुसंधान संस्थान को दान कर चुके?
1: हाँ पंडित जी, हाँ किशन, वे लोग मानव के और अधिक विकास के लिए दिन रात प्रयोग में लगे हुए हैं। सोचो जरा, अगर मेरा ये नश्वर शरीर उन वैज्ञानिकों के काम आ जाए और उससे मानव जाति प्रगति कर सके तो इसमें बुराई क्या है भला?
0: भाई देखो रामलाल जी, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम्हारा शरीर।
1: अरे पंछी उड़े पीछे, पुराने जर्जर पिंजरे का क्या मोल हा? मैं इस आशय का पत्र संस्थान को भेज चुका हूं। उसकी 3 प्रतियां हैं, एक मेरे सिरहाने रामायण में रखी है, दूसरी 2 मेरे पुत्रों के नाम बंद लिफाफों में है। तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है, सगे भाइयों और बेटों से बढ़कर हो। रामायण वाले प्रति में संस्थान का फोन नंबर है, बस फोन कर देना, उनकी गाड़ी आकर मेरा शरीर ले जाएगी। बोलो, करोगे ना?
2: अच्छा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो रामजान जी, आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी।
3: हेलो हेलो, जस्ट अ सेकेंड, डॉक्टर मधु।
4: हाँ?
3: रामलाल जी के घर से फोन है, उनकी डेथ हो गई है तो शायद बॉडी के चक्कर में कोई बात है, प्लीज आप बात कीजिए।
4: हाँ हाँ दो। हेलो, कौन? रामलाल? रामलाल, जस्ट अ सेकेंड, मैं कंप्यूटर पर देखती हूँ। ओ यस यस यस यस, श्री रामलाल, मकान नंबर 511, गली नंबर 6, आदर्श नगर। जी जी जी, इनकी डेथ कब हुई? आधा घंटा पहले। ठीक है, 20 मिनट में हमारी पिकअप वहां पहुंच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बॉडी को बिल्कुल मत छेड़िएगा, हमारी टीम उनको वहां आकर एक इंजेक्शन देगी, बॉडी को हम गाड़ी में रख लेंगे, आप कुछ मत कीजिएगा। बस बस बस, जी जी, थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर, अपनी वैन निकालो जल्दी, और ये कंप्यूटर स्क्रीन पर एड्रेस है, इसे स्कैन करो, लेके जाओ, तुम और वो नए यंगर डॉक्टर है ना, डॉक्टर योगेश।
5: यस सर।
4: हाँ, दोनों फौरन जाओ, हम यहाँ तैयारी करते हैं। और डॉक्टर डेविड कहाँ है?
5: हेलो डॉक्टर मधु, हेलो। ओ आई एम सॉरी, आई एम टू लेट। व्हाट हैपेंड डॉक्टर मधु, इतना एक्साइटमेंट?
4: सर, जैसा बॉडी हम लोग चाह रहे थे वो आ रहा है। उम्र 85, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे कोई मेजर पार्ट डैमेज हुआ हो, नेचुरल डेथ।
5: वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर मधु, 250 साल बाद लोग हमें याद करेंगे। इस काम की शुरुआत डॉक्टर एल्बर्ट डेविड ने की थी। यू नो डॉक्टर मधु, इस पूरी प्रोसेसिंग में हमें 250 साल लगेंगे।
4: 250 साल?
5: Yes.
4: क्या इतने अरसे बाद ये रामलाल, whoever he is, वापस जिंदा हो जाएगा?
5: Yes डॉक्टर मधु, yes। अगर सब कुछ सही तरीके से होता रहा और हमारी प्रगति लगातार चलती रही तो आई एम श्योर।
4: सर आपका नाम तो सब लेंगे, लेकिन मेरा नाम?
5: क्यों नहीं डॉक्टर मधु, कंप्यूटर पर डिटेल्स डाल दो कि इस काम को डॉक्टर एल्बर्ट डेविड और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर मधु सक्सेना ने शुरू किया है, एंड टेक एक्शन। बॉडी कितनी देर में आ जाएगी?
4: सर करना क्या है, बॉडी आने ही वाली है।
5: हाँ सुनो, लैब में चलो, सबसे पहले हम उस बॉडी का सारा खून सिरिंज से बाहर करेंगे और उसकी जगह वो रेड बॉटल में जो वो एक लिक्विड है उसे इंजेक्ट कर देंगे।
4: जी सर।
5: और शरीर को तरल नाइट्रोजन के जार में पैक कर देंगे।
4: ओके सर। सर लगता है रामलाल का बॉडी आ गया।
5: वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
4: जी सर।

0: सर, ये भावुकता, भावना, इमोशन, ये सब क्या होते हैं सर?
1: रियली आई डोंट नो भाई, मुझे पता नहीं, पर हाँ पुरानी बुक्स में इन सब चीजों का जिक्र होता है। एक्चुअली वी ऑल आर वेल डेवलप्ड ह्यूमंस, जैसे हम लोग सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर चुके हैं क्योंकि वे तकलीफ देती थी, इसी तरह हम लोग भावना, इमोशंस और वो क्या कहलाती है, फीलिंग्स, उन सब पर भी विजय हासिल कर चुके हैं।
2: ये देखिए सर, लैब में पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है।
1: गुड, चलो अब शुरू करते हैं, इनको बाहर निकालो।
0: यस सर।
1: सबसे पहले इनकी नसों यानी वेन्स में भरा लिक्विड निकालकर, वो नैनोबॉट्स वाला आर्टिफिशियल ब्लड है ना, वो शरीर में डालो।
0: ओके सर। ओके सर। सर ये इतनी सुकड़ी सुकड़ा ऐसी क्यों है?
1: ओहो भाई, ओल्ड एज, ये सब ओल्ड एज की वजह से है।
2: वो एक्चुअली में सर, अब तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं ना, और हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसलिए ये नहीं, रामलाल ऐसे ही रहेंगे?
1: नहीं नहीं, एक बार ये जिंदा हो जाए फिर इनका काफी कुछ बदलना पड़ेगा। ओ यस, वो खून वाला काम हो गया ना?
0: ओके सर, बिल्कुल हो गया सर।
1: अब मैं सिर पकड़ता हूँ, तुम लोग इनके ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक भेजो।
2: यस सर।
1: जिससे इनका ब्रेन एक बार फिर से काम करना शुरू कर दे। वो ग्रीन स्विच ऑन करो।
2: यस सर।
1: ओ, नैनोमीटर ऑन करो।
0: सर, सर लगता है कि ब्रेन तरंगे ग्रहण कर रहा है, स्क्रीन पर तरंगों वाली रेखाओं में हल्की सी गति दिखाई दे रही है।
1: हाँ।
0: सर ब्रेन मुझे लग रहा है सक्रिय हो रहा है सर।
1: हाँ, कुछ ही समय में नर्वस सिस्टम, यू नो, स्नायु मंडल सक्रिय हो जाएगा और शरीर के ऑर्गन्स को नेसेसरी आदेश भेजना शुरू कर देगा। देखो, ये देखो, रामलाल की पलकों में हरकत हो रही है।
2: यस सर। यस सर, इन्होंने आंखें भी खोल दी हैं और शरीर के दूसरे अंग भी हरकत कर रहे हैं। सर,
1: हाँ,
2: सर शायद कुछ बोलना चाहते हैं।
1: हाँ हाँ, कोशिश करिए, बोलिए। आप रिसर्च सेंटर में हैं?
2: अनुसंधान संस्थान में हैं।
3: अनुसंधान संस्थान, मैं मुझे कौन लाया?
1: जैनी, जरा चेक करके बताओ।
0: यस डॉक्टर, जस्ट अ सेकंड। ये रही सारी डिटेल्स। नाम रामलाल, जन्म का साल 1924, डेथ 2009। जेनी, एड्रेस?
2: एड्रेस है मकान नंबर 511, गली नंबर 6, आदर्श नगर। और डेथ के 6 महीने पहले शरीर अनुसंधान केंद्र को दान का पत्र भेजा गया।
0: और बॉडी लेकर कोई पंडित दीनानाथ और किशनलाल आए थे।
3: दीनानाथ, पंडित, किशन, सब याद आ रहा है। कहाँ है पंडित जी और किशन कहाँ?
1: अरे मरे तो बहुत अरसा बीत गया है।
3: मरे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। मेरी मृत्यु हो गई थी पर मैं जीवित हूँ और आप कहते हैं मेरे मित्र।
1: जैनी, तुम इन्हें समझाओ और जो भी इनकी मदद हो सकती है करो। भाई मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है। हाँ, इन्हें कुछ पैसे भी दे देना।
0: ऑफ कोर्स सर। रामलाल जी, आपको पता है कि ये कौन सा वर्ष चल रहा है?
3: कौन सा साल? नहीं,
0: ये सन 2250 है और आपकी डेथ हुए 241 साल हो चुके हैं रामलाल जी।
3: हाँ, 241, क्या कह रही हो? लगभग 2.5 सदी।
2: बिल्कुल,

0: ये देखिए साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है कि आप जीवित हो गए हैं।
1: वाकई चमत्कार, मैं जीवित हो गया। ओह, मैं जीवित हो गया। इतने वर्षों बाद मैं पूरा जीवित हो गया, पर थोड़ी कमजोरी लग रही है। जोड़ पूरी तरह मुड़ नहीं पा रहे।
2: हाँ रामलाल जी, बीच बीच में आपको हार्मोन थेरेपी लेनी पड़ेगी और कुछ जॉइंट्स और हड्डियाँ भी बदलवानी पड़ेंगी, पर अभी आप जहाँ चाहे जा सकते हैं।
1: हाँ, जा सकता हूँ। हाँ, हाँ, इस घुटन भरे संस्थान के बाहर खुली हवा में सांस ले सकता हूँ, पर अब तो कोई भी नहीं है, कहाँ जाऊंगा?
0: रामलाल जी, जो लोग शरीर डोनेट करते हैं हम उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जिस मकान में आप रहते थे उसमें आपकी नवी पीढ़ी का एक सदस्य परमेंद्र रहता है अपने बेटे और पोते के साथ।
1: ओह, मेरा अपना खून, मेरी नवी दसवीं और ग्यारहवीं पीढ़ी। धन्यवाद जैनी, धन्यवाद।
2: रामलाल जी, बाहर निकलने से पहले ये चश्मा, ऑक्सीजन मास्क और ये विशेष छाता जरूर ले जाइए।
1: पर क्यों ये सब चीजें?
0: हवा अब वैसी शुद्ध नहीं रही जैसी 250 साल पहले थी। बहुत पॉल्यूशन है बाहर, ओजोन परत तो जैसे समाप्त ही हो चुकी है।
2: रामलाल जी, धूप की गर्मी और चमक असहनीय है, इसीलिए इस चश्मे और छाते की जरूरत पड़ेगी। ओके रामलाल जी, गुड लक। और हाँ, हर तीसरे दिन चेकअप के लिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है? टैक्सी ले लीजिएगा।
1: हाँ,
2: आते रहिएगा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जैनी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत मदद की। मेरी नवी पीढ़ी कैसी होगी?

0: हे भगवान, क्या ये वही शहर है जिसमें मैं 250 साल पहले रहता था? ये गगनचुंबी इमारतें, अजीब अजीब सी गोल गोल गाड़ियां, पशु पक्षी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, न हरियाली है, अब मनुष्य भी कुछ कुछ अजीब से लग रहे हैं, मानो इंसान नहीं चलते फिरते रोबोट हों। वो सामने एक गोलाकार वाहन खड़ा है जिस पर टैक्सी लिखा है, चलो उसी में चलते हैं। जेनी ने कहा था टैक्सी कर लेना। शरीर में कुछ अकड़न सी भी है, हाँ चलता हूं। क्यों भाई, अब टैक्सी खाली है?
1: व्हाई नॉट भाई? तो भाई आप इतने ओल्ड क्यों हैं?
0: क्या मतलब? अरे भैया, बूढ़े तो सभी होते हैं।
1: अब कौन ओल्ड होता है? स्किन, आईज, माइंड, आई मीन दिमाग, कोई भी बॉडी का पार्ट हो बदलवा लो। हाँ?
0: और वो पुराना अंग,
1: उसका ऑर्गेनिक मेन्योर बन जाता है, आई मीन जैविक खाद। बाय द वे, वेयर विल यू गो? कहाँ चला है?
0: हाँ, मुझे वो आदर्श नगर, आदर्श नगर।
1: ओह, यू मीन मोरल सिटी? ओके ओके ओके, आप ये स्मॉल स्क्रीन है, इस पर अपना एड्रेस लिख दीजिए।
0: एड्रेस लिख दूं?
1: यस।
0: फिर क्या होगा?
1: अब मेरे सामने

0: यहां से वहां तक के रास्ते का पूरा पिक्चर आ जाएगा। मैं बस सड़क के चित्र पर ये मैग्नेट चलाऊंगा और टैक्सी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली यानी स्वचालित रूप से सड़क पर चलती रहेगी।
1: पर वो एक्सीडेंट हो गया।
0: अब एक्सीडेंट नहीं होते, सब अपनी अपनी लेन में है। वो देखिए ऊपर रेड ब्लू येलो एयर कार्स, इनमें बच्चे स्कूल जाते हैं, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब ये लीजिए, आपका घर आ गया।
1: हाँ? घर आ गया इतनी जल्दी?
0: यस, हम लोग कम से कम 200 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं।
1: अरे ठीक है भैया, ठीक है। ये लो पैसे।
0: थैंक यू।
1: अच्छा भैया,

0: ओ, मेरा मेरा घर, मेरा घर, ये बाहर शायद
1: अब रामलाल है ना, मेरी 9 पीढ़ी पुराने ग्रैंडपा।
0: हाँ बेटा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम परमानंद हो ना?
1: यस, फोन आया था रिसर्च सेंटर वालों का। कम कम इनसाइड।
0: हो तभी तभी। और बहू और तुम्हारा बेटा और मेरा पोता कहाँ है सब?
1: आ जाएंगे अभी, दे आर गोइंग टू कम, आने वाले हैं। इस सेंटर वालों ने आपकी स्किन और बॉडी पार्ट्स को चेंज नहीं किया ग्रैंडपा, आप काम कैसे करेंगे?
0: हाँ? काम? मगर बेटा, अब काम और इस उम्र में?
1: ग्रैंडपा, काम करके कुछ अर्न तो करना ही होगा, उसमें एज क्या करेगी? आज के टाइम में सर्वाइव करना बहुत कठिन है।
0: अच्छा, तुम क्या करते हो?
1: मैं काम ही कहाँ है ग्रैंडपा, सब कुछ ऑटोमेटिक है, मैक्सिमम काम रोबोट्स करते हैं, और जिनके पास लैंड यानी जमीन है वे फिर भी काफी कुछ कर लेते हैं, पर आपने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है, बस ये 2 रूम फ्लैट, क्या करें, एक रूम में रहते हैं और एक को लैब बना रखा है।
0: वो तो ठीक है, पर लैब में
1: वो मेंस का जो स्पर्म यानी पुरुषों का जो शुक्राणु होता है ना, उसको इकट्ठा करता है, जो लोग प्रजनन शक्ति खो चुके हैं उन्हें आवश्यकता पड़ती है। ग्रैंडपा, मीट माय वाइफ, ये मेरी पत्नी है, आपके लिए ब्रेकफास्ट बना खिलाई है। हाँ ब्रेकफास्ट ग्रैंडपा, इससे आपको एनर्जी मिलेगी।
0: पर बेटा, ये है क्या, क्या है ये? और वो बहू ऐसे चुपचाप नाश्ता रखकर क्यों चली गई?
1: ग्रैंडपा, उसे कुछ पार्ट्स का ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी पूरा ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। और ये जो ब्रेकफास्ट है, आजकल सब वेजिटेबल्स लैब में उगाई जाती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण खेतों में उग नहीं सकती, इसलिए बहुत कॉस्टली है, और ग्रेन्स में भी न्यूट्रिशंस नहीं बचे हैं ग्रैंडपा।
0: तो फिर ये भोजन?
1: पोषक तत्व तो चाहिए ना ग्रैंडपा, आजकल महिलाओं में अबॉर्शन करवाने की प्रवृत्ति बहुत है, उसी अबॉर्टेड फीटस की कोशिकाओं में पोषक तत्व भारी मात्रा में होते हैं, भोजन में उन्हीं का प्रयोग करते हैं ग्रैंडपा। आप खाइए ना ग्रैंडपा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा।
0: हे राम, अब सुनो बेटा, मुझे भूख नहीं है, अब वो पानी।
1: हाँ, वाटर है ना ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, आजकल हर घर में रिसाइक्लिंग प्लांट लगा हुआ है, घर का, बाथरूम का, सीवर का सारा पानी रिसाइकिल करके काम में लेते हैं।
0: सुनो सुनो बेटा, नहीं, रहने दो, ऐसे ही ठीक।

0: ऐसे ही ठीक है।
1: और ये लीजिए, मेरा सन और ग्रैंड डॉटर भी आ गए हैं।
2: हाय, हेलो डैड, हाउ आर यू?
3: ओह, तो ये हैं हमारे बड़े बुजुर्ग यानी एंशिएंट दादाजी। ये
4: व्हाट अ अग्ली मैन, कितना गंदे है, इन्हें अपने घर में किसने घुसने दिया? ओह, आई एम गोइंग टू प्ले, इन्हें घर से जल्दी निकालो प्लीज। ओह
1: सॉरी ग्रैंडपा, वो बच्चा है ना, उसने कभी किसी ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को देखा नहीं, इसलिए सॉरी।
3: बुजुर्ग दादाजी, क्या इरादा है आपका? या तो अपने सारे अंग बदलवा लीजिए, वरना आप जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे आप।
0: तुम करते क्या हो बेटा?
3: ओ माय ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड दादाजी, यू नो आजकल जो है डेड बॉडीज का कार्बनिक खाद बनाने का धंधा काफी चलता है। मैं जो है उसमें खाद फैक्ट्री में लाशें जो होते हैं, बॉडीज जो है डेड बॉडीज, उसका सप्लाई करता है।
0: ओ, तो तुम सोच रहे हो कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश भी?
3: मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ, पर इन केस आप, अरे अरे आप कहाँ चल रही है? ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड दादाजी, डैडी डैडी प्लीज रोके ने, ये कहाँ जा रहे हैं?
1: जाने दो जाने दो, हमारे पास इनके लिए जगह कहाँ है जहाँ ये रहते, कहीं यूं ही मार खप जाएंगे।
0: हे प्रभु, हे प्रभु, ये दुनिया को क्या हो गया, ये दुनिया को क्या हो गया प्रभु? मैंने अपना शरीर दान किया था मानव के विकास में सहायक होने के लिए। मानता हूं विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, पर ये कैसा विकास है, कैसा विकास है, भावनाहीन, मानवताहीन।

खाता तो मैं जाता तो मैं वहीं घर पर भूल आया। हाँ घर, हाँ घर घर घर कैसा घर, कैसा घर, क्या क्या वास्तव में वो मेरा घर था, क्या सचमुच सचमुच वे हृदयहीन मेरे वंशज थे जो मेरी लाश का व्यापार करने से भी नहीं चूकते। शायद शायद ये अम्ल की वर्षा है जो मेरी जर्जर त्वचा पर अंगारों सी बरस रही है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहां जाऊं कहां जाऊं। अरे ये सामने सामने इतनी आग कैसे जल रही है? हो कचरा जलाने का संयंत्र है। अग्नि अग्नि सर्वभक्षी अग्नि सर्वभक्षी अग्नि। एक बार इस अग्नि का मान रखते हुए मैंने शरीर लैब को समर्पित कर दिया था, पर आज इन लपटों में आह्वान है, इन लपटों में आह्वान है, निमंत्रण है, मुक्ति का मार्ग है। हाँ हाँ मुक्ति का मार्ग। हे अग्नि आज तुझे मैं ये जर्जर शरीर, व्यथित मन, घायल आत्मा, सब कुछ समर्पित करता हूं, सब कुछ समर्पित करता हूं, सब कुछ समर्पित करता हूं। मुझे भस्म करके कष्ट मुक्त कर दो मां, मुझे भस्म करके कष्ट मुक्त कर दो मां।

0: मुझे कष्ट मुक्त कर दो मां।
1: He's dead now. He is no more.
2: Oh, God.

0: दिलीप सिंह नरूका। नाटक की लेखिका थी श्रीमती सुधा जौहरी। निर्देशन किया H.S. व्यास ने।
1: ये प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर केंद्र की है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक पुनर्जीवन, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और लीजिए अब सुनिए जल की भोपाल की ट्रेन।
3: आपके चक्कर लगा रहा हूँ पर
4: अच्छी बात है अजी, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है अजी, तो मैं करके आ रहा हूँ।
3: नहीं नहीं, वैसे तो आप मेरी बात ही सुन रहे हैं पर
4: अजी, पर क्या, जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि बात सुनिए, मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं प्लीज। भाई क्या मतलब अजी, मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया था यहाँ।
3: गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए।
4: हैं, ये स्टाइल ठीक है, आइंदा कभी ऐसे मत बुलाना। वैसे बाई दी वे आपने मुझे बुलाया क्यों था?
3: देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ है।
4: क्यों,
3: क्यों क्या मतलब?
4: अरे भाई, तुम क्यों पूछना चाहते हो इंक्वायरी ऑफिस का पता?
3: मुझे काम है।
4: क्या काम है
3: अजी, है कोई काम?
4: अरे भाई फिर भी, भाई आप मुझसे पता पूछ रहे हैं कि नहीं?
3: भाई कहा ना, मुझे काम है।
4: अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो काम क्या है।
3: अजी मुझे कोई भी काम हो, आपको क्या मतलब, आपको पता बताना है तो बता दो, नहीं तो मुझे माफ करो।
4: अरे ले, ले, ले, ले, आप तो खामा खामी नाराज हो गए। अरे भाई मुझे पता बताने में क्या इतराज हो सकता है, अभी बता देता हूँ।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद
3: अजी, आपके पता बताने का धन्यवाद।
4: अभी मैंने बताया कहाँ है।
3: नहीं नहीं, मतलब आप पता बताने को राजी हो गए ना, इसलिए।
4: अजी अभी राजी तो हुआ हूँ, पता थोड़ा ही बताया है, और अभी नहीं बताऊं तो है? अजी आपका धन्यवाद तो बेकार चला जाएगा ना।
3: हाँ,
4: इसलिए धन्यवाद पता बताने के बाद देना।
3: अच्छा
4: हाँ, अब देखो यहाँ से सीधे जाओ,
3: सीधे
4: फिर दाहिने मुड़ जाओ, फिर 10-12 कदम चलने पर एक दरवाजा आएगा।
3: अच्छा,
4: उसमें दाहिने मुड़ जाओ।
3: हाँ,
4: फिर 10 कदम आगे चलो और फिर 10 कदम पीछे चलो।
3: 10 कदम आगे चलूं फिर 10 कदम पीछे चलूं, तो फिर मैं चलूं ही क्यों?
4: अजी तो मत चलो, खड़े रहो यहाँ।
3: अजी अजी, तो आप कहाँ चल रही है?
4: अरे जब आप कह रहे हैं कि मैं चलूं ही क्यों, तो मैं पता बताऊं ही क्यों?
3: अजी देखिए भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब 10 कदम आगे चलना हो फिर 10 कदम पीछे चलना हो तो चला ही क्यों जाए?
4: अजी तो आपको पता मालूम करना है कि नहीं?
3: अजी करना है।
4: अजी तो फिर तो चलना तो पड़ेगा ही।
3: अच्छा ठीक है, बताइए।
4: तो बस उसके बाद सामने एक वजन तुलने की मशीन आएगी।
3: अच्छा,
4: और उसके बराबर में ही एक किताबों की दुकान है।
3: अजी किताबों की दुकान से क्या मतलब?
4: अजी क्या मतलब, क्या किताबों की दुकान का मतलब जहाँ पे किताब मिलती है।
3: अजी पर मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए।
4: अजय भाई तो बता रहा हूँ बरखुरदार, उस किताबों की दुकान के ठीक सामने इंक्वायरी ऑफिस है।
3: अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।
4: सुनिए,
3: क्या है?
4: ऐसे ही चल दिए, एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर आपको पता बताया और तुम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, अब ठीक है?
4: हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज। हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये आ गया दरवाजा, और वो रही वजन तुलने की मशीन, ये किताबों की, हाँ वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। हे भगवान, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, लाज रखना। गुड मॉर्निंग सर।
5: गुड मॉर्निंग
3: जी सर, मैं,
5: हाँ हाँ
3: सर, मैं आया हूँ।
5: आप आए हैं ये तो मैं भी देख रहा हूँ।
3: हाँ सर, हाँ मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है, ये रही मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सर।
5: ज्वाइनिंग रिपोर्ट?
3: जी सर।
5: ये कोई वक्त है आने का? एक घंटा लेट
3: सर, वो बात
5: ये सर, वो क्या, आज ड्यूटी के पहले दिन ही लेट?
3: हाँ सर, वो रास्ते में,
5: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो और तुम मानो कि तुम लेट हो।
3: हाँ सर, वो तो मैं मानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन
5: जब मानते हो लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्या है?
3: सर बात ये थी कि,
5: खैर छोड़ो, यहाँ इस कुर्सी पर बैठो।
3: जी।
5: देखो ये पूछताछ ऑफिस है।
3: हाँ।
5: समझे?
3: जी।
5: किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई जानकारी मिलनी चाहिए, समझ गए?
3: समझ गया सर।
5: और हर यात्री से बड़े प्यार से और धीरे धीरे बोलना, समझ गए?
3: जी सर।
5: तो अब शुरू करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कोई बात हो तो मेरे कमरे में आ जाना।
3: जी के सर। हाँ आ जाऊंगा सर।
5: मैंने कोई लतीफा सुनाया है?
3: नहीं तो।
5: तो हंस क्यों रहे हो?
3: वो तो यूं ही हंस रहा था सर।
5: ठीक है बैठ जाओ, अब ध्यान से काम करो।
3: हे भगवान, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था।
6: ए पकौड़े गरम, खारे खारे गरमा गरम।

0: पकौड़े वाले खा ले।
1: पकौड़े वाले
0: आए बाबू जी।
1: हाँ
0: क्या है बाबू जी?
1: भैया कैसे देते हो पकौड़ी?
0: कागज में बांध के ऐसे देते हैं बाबू जी।
1: मेरा मतलब यह है कि क्या भाव देते हो?
0: 250 रुपए की 10 किलो।
1: 250? अबे 100 ग्राम कितने की देता है?
0: अब खुद ही हिसाब लगा लो बाबू जी, गणित नहीं आती है क्या?
1: अबे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठा हूँ यहाँ? खैर छोड़, ला 100 ग्राम पकौड़ी दे।
0: नहीं दे सकता?
1: नहीं क्यों नहीं दे सकता?
0: खत्म हो गई है।
1: अरे खत्म हो गई तो फिर चिल्ला क्यों रहा था भाई? पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम।
0: अब बाबू जी दिन भर ऐसे चिल्लाते रहते हैं, वो तो आदत पड़ गई है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था,
1: ऐसे ही कह रहा था।
0: हाँ ए पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, खा ले, खा ले।
1: कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, अब कोई झग्गन चक्कर मिल गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ये कोई आ रहा है
2: क्या? यही इंक्वायरी ऑफिसर?
1: हाँ भैया यही है।
2: क्या आप बता सकते हैं कि मोहन देसाई कहाँ रहते हैं?
1: मोहन देसाई?
2: हाँ हाँ, मोहन देसाई। बहुत सी फिल्में बनाई हैं उन्होंने और अब बना रहे हैं देव मेरा नाम। मुझे उनसे मिलना है।
1: अरे मुझे क्या पता भैया कहाँ रहते हैं?
3: नहीं मालूम भैया। तो ये बताओ कि सुभाष रई कहाँ रहता है?
1: सुभाष रई?
3: हाँ हाँ सुभाष रई, लेजी मैन, यू डोंट नो, शोमैन, शोमैन।
1: जी मुझे क्या पता कहाँ रहता है वो।
4: खैर छोड़ो, ये बताओ कि नीलकमल कहाँ मिलेगी? नीलकमल हमें दीवारों में चुन कर चली गई। देखो बताओ कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी?
1: अजी मुझे क्या पता कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी?
3: अरे नहीं मालूम तो फिर मैं कैसे गाना गाऊंगा कि आएगा आने वाला? 1945 में गाया था, तूने भी सुना होगा, बोल।
1: अरे पर आप ये सवाल सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई?
3: अरे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, अब तुझसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, बोल।
1: अजी भाई साहब इस पूछताछ का मतलब है रेलवे पूछताछ, यहाँ रेलों के बारे में पूछते हैं।
3: अच्छा रेलों के बारे में?
1: हाँ।
3: इंक्वायरी ऑफिस की रेल चली जयपुर, जोधपुर, रायपुर, धौलपुर, खंडाला, मंडाला और भोपाल चली।
1: देखिए भाई साहब अगर आपको रेलों के बारे में पूछना है तो पूछिए, वरना जाइए ऐसे।
3: ठीक है अब हम रेलों के बारे में पूछते हैं भैया। ये जो होते हैं ना लाल लाल डब्बे जो इंजन के पीछे चलते हैं, कहाँ बनते हैं?
1: जी मेरे घर पे बनते हैं। अजी डिब्बे का बनते हैं और इंजन का बनता है, इस बात से मुझे क्या मतलब?
3: झूंझल क्यों खाते हैं आप? अब तो मैं रेलों के बारे में ही पूछ रहा हूँ ना।
1: अजी रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
3: रेलों के आने जाने के बारे में? बहुत अच्छे भाई साहब, ये रेल क्यों आती है?
1: भाई यात्रियों को लेने आती है।
3: फिर जाती क्यों है?
1: अरे उन्हें लेकर जाती है, इसलिए जाती है। मगर तुझे कहाँ जाना है?
2: मुझे है, मुझे तो कहीं नहीं जाना रे, वो थोड़ा फिल्म सिटी जाना था इसलिए आ गए रे। जाऊं क्या?
1: अरे भैया
2: जाऊं क्या रे?
1: अरे चलो जाओ ऐसे। भगवान कैसे कैसे लोग
5: मिले भाई साहब जी। भाई साहब जी, भाई साहब जी।
1: क्या है भाई साहब, क्यों आप रहे हैं आप?
5: जी भाई साहब जी 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से बक्कर आ रहा हूँ मैं।
1: क्यों भैया क्या बात आ गई?
5: मैं जानना चाह रहा था भाई साहब कि ये भोपाल जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाती है?
1: भोपाल जाने वाली ट्रेन?
5: हाँ जी भाई साहब जी।
1: हाँ एक मिनट जरा देख के बताता हूँ। ये वो भोपाल, हाँ भैया वो तो 8 बजे जाती है और वो तो गई।
5: गई?
1: हाँ जी गई।
5: अजी भाई साहब जी भोपाल जाने वाली ट्रेन?
1: हाँ भैया भोपाल जाने वाली ट्रेन।
5: अजी भाई साहब जी वो वाली जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है?
1: अरे हाँ भैया 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है वो ट्रेन।
5: अजी भाई साहब समझे नहीं आप, वो 7 डाउन है, वो पूछ रहा हूँ मैं।
1: मुझे मालूम है 7 डाउन है और 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, 8 बजे जाती है, भोपाल जाती है। कहाँ ना वो ट्रेन गई?
5: गई क्या?
1: हाँ गई।
5: अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है फिर।
1: क्या आदमी, कैसा आदमी, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में।
5: अजी भाई साहब जी
1: अब क्या है भाई,
5: कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
1: अजी तुम मेरे कोई जीजा जी लगते हो, कोई भाई हो मेरे, कोई दोस्त हो, क्यों मजाक करूंगा तुमसे मैं?
5: खाओ मेरी कसम।
1: तेरी कसम? तेरे पूरे खानदान की कसम? भोपाल जाने वाली ट्रेन गई?
5: वास्तव में गई क्या भाई साहब?
1: अरे वास्तव में ही गई।
5: सच्ची?
1: अरे सच्ची में गई, रियल में गई, भोपाल जाने वाली ट्रेन गई।
5: अच्छा
1: हाँ
5: ठीक है भाई साहब।
1: मेरे दादा आज मैं पागल हो जाऊंगा
5: भाई साहब जी।
1: अरे क्या है, अरे यार भोपाल जाने वाली ट्रेन गई?
5: नहीं वो तो मेरे को पता है गई,
1: तो
5: मैं तो पूछ रहा था कि पूरी गई क्या?
1: नहीं आधी खड़ी है अभी।
5: खड़ी है ना?
1: हाँ।
5: खुली?
1: हाँ। और ये ट्रेन कैसे जाएगी, ट्रेन तो पूरी जाती है।
5: पूरी जाती है क्या?
1: हाँ।
5: फिर तो इंजन भी क्या होगा?
1: अरे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे, इंजन ही तो दे जाता है ट्रेन को।
5: वो भाई साहब वो गार्ड का डिब्बा भी गया क्या?
1: अरे गार्ड का डिब्बा, डाक का डिब्बा, घी का डिब्बा, सारे डिब्बे गए, तू जा यहाँ से।
5: पहिए भी गए क्या भाई साहब?
1: कौन से जन्म का बदला ले रहा है, पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे?
5: अजी भाई साहब मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा।
1: अरे जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई?
5: क्यों छत भी जाती है क्या ट्रेन के साथ?
1: नहीं पीछे पीछे चलती है वो तो। ट्रेन भी

0: तंगी होती है छत।
1: अच्छा
0: हाँ
1: ठीक है भाई साहब, फिर
0: कैसा आदमी है
1: भाई साहब जी?
0: क्या
1: भाई साहब जी, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या?
0: क्यों नहीं हो सकता, आओ पीठ पर बैठो मेरी, चलते हैं अपन भोपाल।
1: अजी ऐसे तो देर हो जाएगी,
0: अब तुम्हारा घर है, कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे। चलो
1: भाई साहब मैं क्या करूं, ट्रेन कैसे चलेगी, मैंने टिकट भी लिया था।
0: अरे तुम लेट हो गए भैया, और ट्रेन का टाइम हो गया था इसलिए वो चली गई।
1: अरे तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई, मैंने टिकट भी लिया था ना।
0: तो टिकट लिया था तो तू कोई भगवान हो गया क्या?
1: मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को भोपाल जाना, आप मेरे को भोपाल भेजो।
0: मैं तेरे को भोपाल कैसे भेजूं?
1: कैसे भी भेजो, और ट्रेन को वापस बुला लो, मैं लटक कर ही चला जाऊंगा।
0: अरे ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे।
1: अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो रेलवे वालों की धांधली है, रेलवे हाय हाय रेलवे।
0: अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई,
1: मेरे को भोपाल भेजो नहीं तो मैं ऐसे नारे लाऊंगा।
0: देखो भैया मैं भोपाल कैसे भेज सकता हूँ?
1: अरे कैसे भेजो, ये आप सोचो, आपकी गलती है। अरे ये कोई लगा रखे भाई साहब, देखो ये
0: भैया एक काम करो, ऐसा करो तुम बस से चले जाओ।
1: बस से? बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
0: अरे पर ट्रेन तो चली गई।
1: अरे तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो
0: गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
1: आपको एक आठ डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वालों को असुविधा ना हो।
0: हाँ मैं आपकी सलाह रेल मंत्री तक पहुँचा दूंगा श्रीमान।
1: पर मैं अभी भोपाल कैसे जाऊँ?
0: अभी अभी कैसे जाओ? हाँ भैया आप बस से चले जाओ। भैया
1: बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
0: अजी आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस से चले जाओ, पैर पड़ता हूँ, आरती उतार हूँ आपकी।
1: अच्छा ठीक है भाई साहब, जब आप इतना ही कह रहे हो तो फिर मैं बस से चल जाता हूँ।
0: धन्यवाद भाई साहब, हे भगवान मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है।
1: भाई साहब जी, भाई साहब जी
0: अब क्या है?
1: वो आप एक काम कर सकते हैं क्या?
0: बोलिए।
1: वो बस स्टैंड बहुत दूर है यहाँ से,
0: छोड़ के आऊँ क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा करिए एक टिकट मेरा बुक करा दीजिए फोन करके, मेहरबानी होगी।
0: टिकट बुक कराना पड़ेगा?
1: हाँ भाई साहब जी।
0: ठीक है एक मिनट, नंबर बताना जरा।
1: वो नंबर तो भाई साहब वो,
0: हाँ ठीक है ठीक है, ये 31 32 22।
1: हाँ भाई साहब यही था।
0: हाँ 3 1 3 2 2 2। हेलो, हाँ जी बस स्टैंड इंक्वायरी से बोल रहे हैं? हाँ साहब, वो भोपाल जाने वाली बस की एक टिक है जी? नहीं भाई साहब मैं कर नहीं रहा हूँ, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है। हाँ जी भाई साहब, मैं इतना पूछना चाहता था कि ये भोपाल जाने वाली बस की कोई टिकट मिल सकती है? हैं साहब? नहीं, क्यों? भोपाल जाने वाली बस गई? हट, ठीक है। अब भाई साहब वो भोपाल जाने वाली बस तो गई।
1: गई क्या?
0: हाँ
1: पूछो, वास्तव में गई क्या?
0: हेलो, वास्तव में गई क्या? हाँ भैया वास्तव में गई।
1: ये भी पूछो, पूरी गई क्या?
0: हेलो पूरी गई? अबे तेरी तो हट।
2: ए पकोड़े गरम खाले खाले, गरमा गरम पकोड़े, अरे पकोड़े गरमा गरम पकोड़े भाऊजी।
0: अरे नहीं चाहिए पकोड़ी।
2: मैं पकोड़े देने थोड़ी आया हूँ।
0: तो क्या करने आया?
2: मैं तो मैसेज देने आया हूँ।
0: किसका मैसेज?
2: वो जो सामने बेंच पर बैठा है ना चश्मे वाला,
0: वो।
2: हाँ
0: क्या कह रहा है वो?
2: उसने पूछवाया कि भोपाल वाली ट्रेन गई क्या?
0: ये इधर आ, ये रही भोपाल वाली ट्रेन।
2: मगर मेरे को क्यों मार
0: रही?
2: अरे मेरे को,
0: ये
2: रही भोपाल वाली ट्रेन।
0: मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, पता नहीं कैसे कैसे कैसे लोग आते हैं। मैं अभी सर से कह के आता हूँ। सर मैं नौकरी नहीं करूंगा, आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए सर।
3: अरे आज पहले दिन इस्तीफे की बात कर रहे हो?
0: अरे सर पहले दिन ही मैं तो बहुत परेशान हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा, आप तो आज ही इस्तीफा ले लीजिए।
3: ठीक है अपना इस्तीफा दे दीजिए और चार्ज भी दे दीजिए।
0: ठीक है सर ले लीजिए।
3: तो बताइए भोपाल वाली ट्रेन गई क्या?
0: हाँ गई है।
4: तो अभी आप सुन रहे थे चल की, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और अब समय हो चला है हेलो जयपुर कार्यक्रम का, तो सुनिए हेलो जयपुर कार्यक्रम।

जयपुर, गुड मॉर्निंग जयपुर। कभी कभी ना जिंदगी को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना होता है, बस एक छोटी सी मुस्कान और एक अच्छी सी बात और थोड़ा सा अपना वक्त अपने लिए। और रविवार शायद इसीलिए खास होता है, थोड़ा ठहरने के लिए, थोड़ा मुस्कुराने के लिए और खुद से ये पूछने के लिए मैं खुश हूँ। सो आई होप आप भी खुश होंगे, प्यारी से स्माइल तो दे दीजिए ना। नमस्कार, मैं हूँ राखी आपके साथ और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम गेम चेंजर। और आज ये 20 सितंबर संडे, तो क्यों ना आज कुछ ऐसा करें जो हमारे दिल का ही नहीं हमारे मूड का भी गेम चेंज हो जाए। आज का कोई गाना आपको पुरानी यादों में ले जाए, या कोई बात आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, या शायद मेरी आवाज ही आपके रविवार को थोड़ा और खूबसूरत बना दे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ अगले कुछ पल सिर्फ गाने सुनने के लिए, महसूस करने के लिए। और आज हम गेम चेंजर में कुछ अलग हटके कुछ करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। फिलहाल गहरा हुआ है ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट तक।

0: बैठे अब तो कुछ है बोलना,
1: कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना।
2: बिल्कुल, आपको हमें बोलना है और बहुत गहराई से अपने आप पर आज सोचना है कि क्या खास करना है।
0: तो कुछ है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर। मैं हूँ राखी आपके साथ, और बात हो रही है कुछ खास करने की, क्योंकि चुप रहना नहीं है, बहुत कुछ बोलना है। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो चुप रहने से कुछ नहीं होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर यही सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन यही तो सोच आपको कहीं ना कहीं गिव अप करने से, मतलब आगे गिव अप कर देते हैं। आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है। रविवार की धीमी सुबह आज अलार्म नहीं, आराम से उठने का दिन है, गहराई से सोचने का दिन है। मौसम का मिजाज बारिश, बादल, ठंडी हवा और बदलता मौसम है। चाय की चुस्की और मौसम, रविवार की चाय का अलग ही मज़ा होता है। बारिश और पुरानी यादें, मौसम कैसे किसी पुराने किस्से और इंसान की याद दिला देता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके जहन में मैं डाल रही हूँ। खिड़की के पास बैठने का सुकून, बाहर का मौसम देखना भी एक छोटी सी खुशी होता है। और संडे सेल्फ केयर, आज खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए और सोचिए कि आपने अपने आप से कब बात की थी। सबके लिए बारे में सोचते हो, सबसे बातें करते हो, क्या आपने अपने बारे में बात की कि हाँ मैं कैसा हूँ? अपने आप से पूछा, अरे क्या हालचाल है मेरे दिल, सब ठीक तो है, सब खैरियत तो है? हाँ, अपने लिए कितना समय निकाला एक्सरसाइज के लिए, अपने लिए जो दिल चाहता है उसे करने के लिए कितना समय निकाला? बिना भाग दौड़ की सुबह एक रोज़मर्रा की दौड़ में से एक दिन का ब्रेक तो बनता है, और एक ब्रेक अपने लिए जो आप करना चाहते हैं। मौसम और मूड का रिश्ता, बाहर का मौसम हमारे मन को कैसे प्रभावित करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन पर अमल कीजिए। और परिवार के साथ संडे साथ बैठकर नाश्ता करना और बातें करना और हंसी मजाक, तो अपने के लिए टाइम आपने कब निकाला था? हमेशा आप अपने एजेंडे को लेकर संडे को भी बैठ जाते हैं लैपटॉप के साथ, और या फिर घर के सारे पेंडिंग वर्क को करने के लिए, तो फिर आपने अपने लिए कब समय निकाला? जी नहीं निकाला ना, निकालो निकालो और सोचो अपने बारे में। संडे की छोटी छोटी खुशियाँ, गर्म पकौड़े, चाय।

पसंदीदा गाने और लंबी लंबी बातें, जैसे कि मैं आपसे लंबी लंबी बातें कर रही हूँ क्योंकि लंबे टाइम बाद आज संडे को आपसे बात करने आई हूँ और हेलो जयपुर में आपके साथ हूँ। मौसम की खुशबू, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 10:20 पर आप एशियन गेम्स 2026 हाईलाइट्स सुनेंगे और उसके बाद हेलो जयपुर में हम वापस से 10:40 पर आपसे रूबरू मतलब बातचीत करेंगे और आपके रेडियो सेट तक हेलो जयपुर में गेम चेंजर आज आपके सामने लेकर आएंगे। और गेम चेंजर भी वही होगा जो आपको कभी ना कभी लगा होगा, अरे रेडियो पर मैं कैसे, अरे मेरी तो आवाज़ पता नहीं यार ऑन एयर जाने लायक है या नहीं। कई बार हम अपने आप को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी अपने आप को हल्के में मत लीजिए, सामने वाला भी आपके सामने आप लगे कि यस ये कुछ बहुत अलग कर सकता है, कुछ है इसमें। तो ये सारी बातें हम करेंगे 10:40 पर। फिलहाल आपको ले चलते हैं विश्व दर्पण की ओर। 10:10 पर आप सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण, तो उधर चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।

0: ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतों को अपनी शर्तों से अवगत कराया। अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और सऊदी अरब पर हौसी विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए अपने नागरिकों से पश्चिम एशिया की यात्रा सोच समझ कर करने का आग्रह किया। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। और एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी कुंसी डिसूजा जापान में 2-0 से हार के बाद महिला एकल कांस्य पदक से चूक गए। अब समाचार विस्तार से। सेमीकंडक्टर से जुड़ा पांचवां सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन के सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 52 देशों के प्रतिनिधि और 150 से अधिक वक्ता शामिल हुए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के मंडपों और 12 राज्य मंडपों में सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर नीति निर्माण से लेकर इसके वाणिज्यिक उत्पादन तक भारत की प्रगति की चर्चा की थी। सम्मेलन के दौरान 56 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, आधुनिक पैकेजिंग, उपकरण और सामग्री, पावर इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक मेधा से जुड़ी घोषणाएं भी हुई। विश्व दर्पण के लिए चाहत सिंह।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे। हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल हैं। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि

भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। पिछले महीने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को अपनी शर्तों से अवगत करा दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसकी मांगे नहीं मानता है तो ईरान निर्णायक युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा है कि ईरान की शर्तों में ईरान की फ्रीज की गई रकम को जारी करना, सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद करना और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। श्री रजाई ने कहा कि ईरान की सभी 7 शर्तें एकदम है। उन्होंने कहा कि ईरान ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक फैले अमरीकी नौसैनिक संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। श्री रजाई ने दावा किया कि हाल ही में ईरान ने पोतरोधी मल्टी वॉरहेड मिसाइल का एक अमरीकी पोत या विमान वाहक के पास परीक्षण किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ईरान की प्रतिक्रिया अधिक व्यापक होगी, जिसमें क्षेत्र के अमरीकी ठिकानों और कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमरीकी प्रशासन ने चेतावनी, क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमरीकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी की है। यमन के हुजी लड़ाकू ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। चेतावनी में कहा गया है कि ईरान का समर्थन करने वाले समूह विदेशों में अमरीकी हितों, व्यवसायों और संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यांत्रिक मेधा यानी AI फोर्स गठित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कहा कि वे AI के क्षेत्र में हो रही उथल पुथल पर मूक दर्शन बनने नहीं रह सकते। श्री ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगली औद्योगिक क्रांति बताया और कहा कि ये अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद में 25% तक का योगदान दे सकता है। श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि डेमोक्रेट पार्टी AI से कथित तबाही की आशंका को लेकर गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसा ही धोखा था जो अमेरिका को नष्ट कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने कहा था कि अमेरिका AI की दौड़ में चीन से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने अमेरिकी तकनीक चुराने वाले चीनी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और वहीं महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। शतरंज ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हराया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रज्ञानंद का डेविड एंटोन गुजारो के साथ और नेहा सरीन का जेमे सेंटोस लटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो महारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। और अब बात करते हैं एशियाई खेलों की। भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा महिला एकल में कांस्य पदक जीतने से चूक गई हैं। यूएना साकामोटो से कड़े मुकाबले में उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच दोनों ही खेलों में निर्णायक क्षण तक चला, जिससे डिसूजा को कई मौके गंवाने का अफसोस रहा। वहीं भारतीय खिलाड़ी के पास मैच पर नियंत्रण करने के कई मौके थे, लेकिन साकामोटो ने शानदार वापसी की। डिसूजा ने दूसरे गेम में भी बढ़त बनाई और एक मैच पॉइंट को विजयी सर्व से बचाया, लेकिन निर्णायक क्षणों में साकामोटो की महत्वपूर्ण गलतियों का फायदा उठाते हुए वो मैच को समाप्त नहीं कर सके। हालांकि डिसूजा के पास पदक जीतने का एक और मौका होगा। अब वे मोहम्मद अनस बेग के साथ मिश्रित युगल कांस्य पदक में प्रतिस्पर्धा करेंगी। बांग्लादेश के ढाका में कम तीव्रता वाले बम धमाकों और बसों में आगजनी की घटनाओं के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने 200 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए हैं और प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। राजधानी में फ्लाईओवर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने धमाकों और बसों में आगजनी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और आगे भी जांच जारी रहेगी ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ा पांचवा सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में सफलता पूर्वक संपन्न। ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में मध्यस्थों को अपनी शर्तों से अवगत कराया। अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और सऊदी अरब पर हौसी विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए अपने नागरिकों से पश्चिम एशिया की यात्रा सोच समझकर आग्रह करने के लिए कहा। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-0 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-0 से हराया। और एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी किमसी डिसूजा जापान में 2-0 से हार के बाद महिला एकल कांस्य पदक से चूक गई हैं। युइना साकामोटो से कड़े मुकाबलों में उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच दोनों ही खेलों में निर्णायक क्षण तक चला, जिससे डिसूजा को कई मौके गंवाने का अफसोस रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए एशियन गेम्स 2026 की हाइलाइट्स।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है, और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
7: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है, और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं, और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है, और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए, तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
6: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है,
7: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ, जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
8: 第20回アジア競技大会の大会を

0: 宣言します。
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहाँ एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
2: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया। और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
3: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली।
4: スポーツマンシップの精神にのっとり、大会の規則を尊重、遵守し、栄光と名誉のために、この競技大会に参加することを約束します。
2: Referee、umpires और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
5: 私たちは第20回アジア競技大会の審判員技術役員を代表し、スポーツマンシップの精神にのっとり、大会の規則を尊重、遵守し、公正なジャッジを行うことを約束します。
2: जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ चेकबॉल में भी कल दो पदक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
0: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा जापान और साउथ कोरिया इवन पाकिस्तान इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
2: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9:00 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया

0: के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर एमएमए तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे, इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 हाइलाइट्स, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और लीजिए अब सुनिए हेलो जयपुर कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे गेम चेंजर।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर राखी के साथ गेम चेंजर, और आज गेम चेंजर में कुछ अलग ही बात होगी। जी हाँ, नमस्कार, राम राम, खमागणी। रविवार को अगर रेडियो के साथ मिल जाए ना एक चाय की चुस्की के साथ प्यारे प्यारे गाने, तो फिर बात ही कुछ और। और साथ में हो अगर आवाज़ आपकी अपनों की, तो फिर बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, आज बात उस आवाज़ की जो सिर्फ रेडियो पर सुनाई नहीं देती थी, लोगों के घरों में पहुंचती थी, दिलों में उतरती थी और फिर परिवार का हिस्सा बन जाती थी। एक ज़माना था जब रेडियो के सामने पूरा परिवार बैठता था और जैसे ही एक खास आवाज़ आती थी, कौन सी आवाज़ आती थी? याद आया बिल्कुल, जो सुनते थे बिना का उनको तो याद होगा। नमस्कार बहनों और भाइयों, बस कान रेडियो पर और दिल उस आवाज़ पर। जी हाँ, आज की कहानी है भारतीय रेडियो की बेहद यादगार आवाज़ अमीन सयानी जी की। आपको भी लगता है ना, अरे रेडियो में आखिर कैसे जाते हैं, हम भी बोलना चाहते हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो एक मिसाल बनी हुई है रेडियो के लिए, और उन्हीं आवाज़ों में से एक गेम चेंजर अमीन सयानी जी को हम आप तक आज पहुँचा रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों, आखिर वो क्या है जिस आवाज़ को आज हम रेडियो की महान आवाज़ों में गिनते हैं, उनके सफ़र में शुरुआत में एक छोटा सा नहीं भी आया था, नहीं समझ रहे? जब कहीं आप कहीं जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं या अपना ऑडिशन देते हैं और ये कहा जाता है यू आर नॉट सेलेक्टेड, या फिर आपके पास कोई कॉल नहीं आता है, या फिर आपके पास कोई लेटर नहीं आता है और आप सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं, अरे क्या हुआ मेरे स्वर परीक्षण का? तो ऐसा भी हुआ नहीं था उनके साथ, लेकिन हाँ उनकी आवाज़ में ये कहा जाता था कि आपकी आवाज़ में ये टोन वैसी नहीं है तो जैसी होनी चाहिए। जिस आवाज़ को आज हम रेडियो की महान आवाज़ों में गिनते हैं, उनके सफ़र में शुरुआत में छोटा सा नहीं आखिर कैसे आया था, क्यों आया था, ये सब बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके रेडियो सेट तक ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचा देते हैं ना, कहीं चाहिएगा नहीं।

जब किसी को शिद्दत से हम चाहते हैं ना, तो वैसे ही उसके अंदर हम समा जाते हैं। जैसे जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं तो दिन रात उसी में मशगूल हो जाते हैं, न दिन का पता होता है न रात का पता होता है। और जब जो चीज़ हम चाहते हैं ना, उसको पाने के लिए कायनात तक कोशिश करते हैं। और ऐसी ही कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं गेम चेंजर में अमीन सयानी जी की, जिस आवाज़ को आज हम रेडियो की महान आवाज़ों में गिनते हैं, उनके सफ़र में शुरुआत में एक छोटा सा, जैसा कि अभी हमने बताया कि नहीं भी आया था, अमीन सयानी जी ने हिंदुस्तानी में रेडियो प्रस्तुति के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके गुजराती लहजे के कारण उस ऑडिशन में उनका चयन नहीं हुआ। अब सोचिए, एक इंसान के सामने दो रास्ते थे, एक चलो नहीं हुआ छोड़ देते हैं, और दूसरा नहीं हुआ तो कुछ नया करते हैं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और फिर उनकी आवाज़ पहुंची रेडियो सिलोन तक। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी रेडियो कहानी जिसे आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल, साल था 1952, दिसंबर में शुरू हुआ एक कार्यक्रम बिना का गीतमाला, और उसके साथ आई अमीन सयानी जी की वह आवाज़ जिसका अंदाज़ बिल्कुल अप

दूसरा तुरंत बोल पड़े, अरे अरे अरे रहने दो भाई, बीना का गीत माला सुन रहे हैं, अमीन सयानी जी आ रहे हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा, ऐसा आपने भी कुछ किया था क्या? चलिए आप हमें भी बता सकते हैं। और फिलहाल ये जिंदगी ना बहुत ही छोटी है, इसलिए लव यू जिंदगी कहते हुए आगे बढ़िए और अपने जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए।

यू ज़िंदगी कहते हैं। और गेम चेंजर में आप भी ऐसा कुछ करिए कि आपको भी लगे कि मेरी लाइफ में भी मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अब करना है, अभी भी वक्त है मेरे पास। और अमीन सयानी जी की बात हो रही है, और उन्होंने 19,000 से ज़्यादा वॉइस ओवर दिए थे, कहीं उन्होंने विज्ञापनों में भी काम किया। सयानी जी की मनमोहक आवाज़ और बोलने का बेहतरीन तरीका भारत के हर कोने में लोगों को पसंद आता था। और उनका शो जैसे ही शुरू होता था, लोग रेडियो के पास में बैठकर ध्यान से सुनते थे। बहनों और भाइयों, बहुत मशहूर हुआ था ये उनका डायलॉग। अमीन जी को भारतीय रेडियो की दुनिया की आइकन के रूप में जाना जाता था। अमीन सयानी जी ने ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू किया था, और उन्होंने करीब 10 सालों तक अंग्रेज़ी प्रोग्राम दिए। इसके बाद 1952 में उन्होंने

ने रेडियो सिलोन में काम किया था और विविध भारती में भी उन्होंने काम किया। रेडियो की दुनिया में वह सबसे फेमस अनाउंसर हुए थे। उनका गीतमाला सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था और वे म्यूज़िक का पहला काउंटडाउन शो होता था जिसमें सारे टॉप 10 पर हैं, आज के पायदान में 10वें नंबर पर ये गीत आता है। तो इस तरह से उनका शुरुआत होती थी। बोलने का अंदाज़ लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल हमसे ही बात कर रहे हैं। और फिल्मों के अगर हम बात करें तो मशहूर गाने सुनाए जाते थे उनमें से टॉप 10, टॉप 9 ऐसे इसी तरह से। और वो प्रोग्राम बुधवार के दिन रात को 8 बजे आता था। लोग इसके लिए हफ्ते भर इंतज़ार किया करते थे। अमीन साहब की माता जी जो थी कुलसुम सयानी जी, और वह एक न्यूज़पेपर चलाया करती थी और अखबार की एडिटिंग, पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में भी उनकी मदर हेल्प करती थी। इसके अलावा फिल्मों में भी अभिनय उन्होंने किया। उन्होंने भूत बंगला, तीन देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी फिल्मों में भी काम किया। तो अमीन सयानी जी का जो बोलने का अंदाज़ आज भी सबको याद है और हमेशा याद रहेगा, अमर रहेगा। और जैसे कि वही वाक्य अपनी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन जाता है जब हम सोचते हैं कि हाँ, हम वो कर सकते हैं जो किसी ने हमारे लिए मना किया, लेकिन हम में वो जज्बा है और उसका प्रोग्राम को या उस काम को हमें करना है। अमीन सयानी जी को दिल से सलाम है, उस आवाज़ को सलाम जिसने रेडियो को सिर्फ सुना नहीं, जिया, और उस दौर की यादों को थोड़ा और करीब लाते हुए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन फ़िलहाल वक्त भी ये कह रहा है कि फ़िलहाल दिलजीत दोसांझ जी को इस ज़माने की ओर बढ़ते हैं उस आवाज़ के साथ। और एक और खूबसूरत सा गाना है जयपुर में गेम चेंजर में आपके लिए। और फिलहाल गेम चेंजर को यहीं कहते हैं टाटा बाय बाय। आप भी बनिए गेम चेंजर। फिलहाल राखी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हैप्पी संडे।

0: इसी के साथ हेलो जयपुर कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: आपकी चाय।
2: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
3: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो जयपुर कार्यक्रम। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, जिसमें आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का। साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की। आपको याद आया, वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्रि जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्रि जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्रि जी से बात की थी।
4: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्रि जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
5: नमस्ते सर, नमस्ते।
4: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
5: सर धन्यवाद, सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
4: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
5: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
4: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं,

0: मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
2: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे। हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का। कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया। और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी के तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया। तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसके एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल। द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट, इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड, और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। और मेरी जो वाइफ है शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था, वो जाग उठे थे मन की बात के बाद। बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को, अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी, आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: अच्छा, ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट

0: मुझे शुरू करनी है।
1: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है। आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को। वी आर ऑल तमिलियंस। मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था। तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन। एक दो साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी। तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी। और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जानें। और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को या एक डेट या कोई किंगडम या कोई किंग उस लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना, तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था। जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
0: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे